0: तमी चाहो चौदह के बो दे लोटी पर दी रो बहले ने विवरण पी भी है मुई खाता लिखे हमरो
1: खाई खाई बहु कोई लोटरी भर दिलवा
2: आंगी चमी जो लोटरी पर दिन छाताई गुदी
1: भर दी आ भर दिवा लोटरी खाली पर दिन बा सही मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खाने बने खाई बिसा खाई मई विश्वास आनन फोन खाले पनी आप ही विवरण खाई मई आपिन खबई बने वित्तीय संस्था के पासवर्ड पिन खाई मई आरी सुमी बैंक आप ही बने आरी
2: सिद्धार्थ बैंक क्यारे जन हितरी जारी संदेश
3: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरिलाई।

0: ब्याङ्की खैमुज बिले चौधी एटीएम मोबाइल डे इन्टरनेट ब्याङ्किङ गोप्य विवरण आरी खै बिले तुई माध्यम क्यारे न्यौ देप्रे छली जानकारी री विषया न्यौ कल पर्दिमो समय न्यौ ठिकदिल खामो ब्याङ्गर वे कर्मचारी बीरा न्यौ देप्रे विवरण री विषया ब्याङ्दे निल पर्दिमो न्यौ तने सतर्क तना ठिक्या बचेना सिद्धार्थ ब्याङ्गर क्याले जनहितरी जारी सन्देश
1: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज।